0: ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ, ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 9056733377। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸ਼ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਈ। ਸਰਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
1: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ।
0: ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਾਸ਼ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
1: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਮੇ ਤੋ ਕਾਮ ਚਾਹੀਏ, ਨਾਮ ਚਾਹੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।
0: ਕਾਮ ਚਾਹੀਏ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ? आप जब हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हो, ऐसे हो नहीं सकता कि आपका नाम नहीं होगा।
1: हाँ जी, अच्छी बात है, ये बाय प्रोडक्ट है हमारा। मेन है कि सबका काम हो जाए और सब खुश रहे और हमें भी आशीर्वाद दे।
0: वेरी गुड, चंगी गल है। सो सराश थोड़े नाल ने बड़ी मेहनत नाल ते बड़े ऑनेस्टी दे नाल काम कर दिया। सो सराश गवर्नमेंट तो थोनों लोन लेके दिंदे आ। ये लोन पहले 2.5 साल 0% ते, कोई ब्याज नहीं, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਾਸ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਏਕ ਸਾਲ ਜਿਨਕੋ ਹੋ ਗਏ ਓਂਟਾਰੀਓ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ, ਯਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੀ ਆਰ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਲਾਈਕ ਕਲੀ ਲੈਂਡ ਕਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੀ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਓਂਟਾਰੀਓ, ਦੈਨ ਵੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਲੋਨ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੈ? 50,000 ਸੇ 1,70,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ। आप स्किल डेवलप करते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं, इजी हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, हाउसवाइफ हैं, उबर ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड हैं, स्किल डेवलप करें, फंडिंग हासिल करें।
0: नंबर है सराश दा 4372643175। एंड सराश कोर्स केड़े केड़े ने? यह एजुकेशन दे लिए लोन ले ते यह केड़े कोर्सेज ने ते ऑनलाइन ने ते पहला दसो
1: जी। ज्यादातर क्लाइंट्स का देखिए, अब ज्यादातर हमारे क्लाइंट हैं अंकल आंटी, पहले ही बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होता है, पता ही आपको, मुझे ही पता है, तो इतनी जिम्मेदारियां पहले से ही हैं इसके इनों में, इसलिए आसान कोर्स हो चाहते हैं जो कि ऑनलाइन है, वो घर के कंफर्ट से कर पाए, करते हैं, पेंशन वाले लोग भी वो भी कर रहे हैं और यंग लोग भी हैं। सो आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, एग्जाम्स नहीं है, सेल्फ स्टडी कोर्सेज है, टीचर नहीं है इसके अंदर, तो आप 20 घंटे हफ्ते में किसी भी टाइम अपने हिसाब से, चाहे आप सिर्फ 2 दिन सैटरडे संडे 10-10 घंटे लॉग इन करें, स्किल भी आ गई, सर्टिफिकेट भी आ गया और साथ में 50,000 से 1,70,000 डॉलर की फंडिंग बिना कोलैटरल के, बिना क्रेडिट चेक के, बिना सिक्योरिटी के, मेरे नहीं आपके खाते में, डायरेक्ट गवर्नमेंट से।
0: वेरी गुड। इंसराश इदे विच डॉक्यूमेंट केड़े केड़े लगदे ने?
1: हाँ जी, आपका NOA हो गया 2025 का, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए और आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, और मतलब डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज पे, अगर फैमिली ऑफ 5 है तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। आज भी 2 फैमिलीज थी, वो फैमिली ऑफ 5 थे, तो उनका एस्टिमेट 178,000 डॉलर का आया है, तो विद इन आप मान के चले 2 महीने में उनको पहली किस्त गिर जाएगी इस अमाउंट की, और अगर फैमिली ऑफ 2 है तो अराउंड 70,000 डॉलर। तो आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, एस्टिमेट ले, एंड हमारे ऑफिस आए हरनटरी डेयरी पे, कल हरनटरी डेयरी पे 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे आए, रजिस्ट्रेशन कराए।
0: ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਰਾਜ ਦਾ 4372643175। ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਲਾਇੰਟ ਕੇ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਬ ਅਪਰੂਵਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਬ ਉਨਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਡੇਟ ਕੋ ਉਨਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇਂ ਆਏਗੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। और बाकी आप जब आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपकी फाइल बनती है, आपको एक्सेस होता है उसके पास, आप ये मान के चलें टेक्निकली 2.5 महीने लगते हैं मैक्सिमम, बट हम 2 से 3 महीने बोल के चलते हैं क्लाइंट को, और आज भी 8 से ज्यादा बंदों की फंडिंग में उनके खाते में डायरेक्ट गिरी है। आप पीछे ना रहिए, गवर्नमेंट अभी कट्स ना कर दे इस चीज में, अभी इनरोल करें, पीछे ना रहिए, बाद में क्या पता गवर्नमेंट जैसे अपने एयरपोर्ट्स बेच रही है यहाँ भी कुछ कट्स कर दे।
0: एंड लास्ट वीक सम अप कर दो, थोड़ी कितनी फीस है ते कदों देनी है?
1: हाँ जी, काम होने के बाद 199 फीस है, जैसे आज 8 बंदों की फंडिंग गिरी है, 8 से ज्यादा, तो अब उनके में से 5 का इंटरेक्ट मुझे आ चुका है, बाकी 3 कल या परसों कर देंगे जैसी उनकी इच्छा। तो हमने तो सब ट्रांसपेरेंट रखा है, फीस हम अपनी छोटी सी रखते हैं, अगर हमारी कमीशन होती, परसेंटेज, कोई चलाकी होती, कोई मीठी बातें होती, हम रोज रोज शोर मचाते ही ना, आराम से 5 क्लाइंट करते और सो जाते। बट नहीं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 8 साल में हजारों को असिस्ट कर चुके हैं, 199 फीस काम होने के बाद, नंबर 437-234-3175 उन्हें कॉल करो, 437-264-3175, स्टाफ रेडी आपकी कॉल के लिए।
0: नंबर एक बार फिर,
1: 437-234-3175 437-264-3175।
0: वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू जी। 8205, हेलो।
2: हाँ जी, सत श्रीकाल नवी जी।
0: सत श्रीकाल जी, किवें हो?
2: वधिया वधिया। अच्छा, मैं गड्डी इंडिया बहुत चलाना है, मैं देख लो हिसाब ला लो, जो कश्मीर लेके गड्डी गया सी पटियाले तो कश्मीर, ते मनाली भी चलाना, मैं हुण भी चलाना, जाके उत्थे जाना उदो चलाना, गड्डी कोई चक्कर ही नहीं हैगा, मैं ऑटोमेटिक गड्डी ऑटोमेटिक रखी उत्थे।
0: अच्छा, थोनों वैसे गड्डी चलानी कित्थे सौखी लगदी, उत्थे या इत्थे? पर थोनू गड्डी चलानी सौखी कित्थे लगदी है, इत्थे या उत्थे?
2: सौखी है पर लोग जिहड़े मतलब फॉलो नहीं करते, रूल ही नहीं जिहनूं पता ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਲੈਣਾ, ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਟਾਂ ਵਿੱਚ।
0: ਚਲੋ, ਦੱਬ ਲੈਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਥੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ।
2: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵੀ,
0: ਆਪ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
0: ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 905-673-3337 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਿਯੋਂਡ ਆਈਵਰ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਨਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਯੋਂਡ ਆਈਵਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-793-3937। ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਰੋਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ 905-793-3937 ਬਿਯੋਂਡ ਆਈ ਵੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 647-622-3203। ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 647-622-3203। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ।

0: A premium clothing brand, Fashion IQ. Fashion IQ. Latest design, trending outfits.
1: लेडीज सूट लहंगे गरारे शरारे
0: कुर्ते पजामे शेरवानिया कोट पैंट ब्लेजर अते किड्स फैशन
1: विंटेज ते सफारी लगेज सेट्स दी वड्डी कलेक्शन थीम वेडिंग ले टॉप टेलर टीम भी अवेलेबल फैशन आईक्यू फैशन आईक्यू हुने कॉल करो 9054533225 या गूगल ते सर्च करो फैशन आईक्यू स्पेशल गिफ्ट ले रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देना ना भूलियो
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ

0: Talk530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: इसी समय ऐसे पल
2: आई थी रख सो बिल्कुल जी सो बहुत खूबसूरत रहा आज दिया गल्ला बातों का सिलसिला सो 905 673 3337 इसे नंबर से कालों गल्ला बात होनगियां.

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लघु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लिए तो हाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फुट हाउ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे, डाइनिंग, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

0: वटाविए ना पग है पछान पंजाबियां दे।
1: वाह वाह क्या बात।
0: दाग पग नू कदी भी लाविए ना
1: वाह
0: कद अपनावे के कदम चाहिए पार है।

0: जीवन फर्नीचर के धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 मार्कोनी कोड बोल्टन, 9059519394। स्टीफन फर्नीचर के धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से
1: किचनर विच शानदार कामयाबी तो बाद पंजाबी आर्ट्स एसोसिएशन हुन ब्रैम्पटन विच लेके आए ने बाली भुपिंदर दा लिखिया अते डायरेक्ट कीता नाटक जस्सू पुत। 10 अक्टूबर ब्रैम्पटन दे रोज थिएटर विखे। टिकटां ते वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-677-1555। पंजाबी आर्ट्स एसोसिएशन दी पेशकश बाली भुपिंदर दा लिखिया ड्रामा जस्सू पुत। टिकटां सिर्फ $15 अते $20। कॉल करो 416-677-1555।

0: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
1: जिंदगी दे सफर विच मुश्किल तां किते भी आ सकदी है, एक्सीडेंट या सट लगन कारण जिंदगी दी गड्डी खलो गई है, काम ते वी नहीं जा सकदे, सारे पासियों समस्यावां ने घेर लिया है, तां दिल ना छड्डो, असीं हां तुहाडे दुख वंडाउण लई। साडे एक्सपीरियंस्ड लॉयर रूपा बराड़ तुहानूं टाइम ते वध तों वध बेनिफिट्स दवा सकदे हन, इत्थों तक कि फीस वी क्लेम मिलण तों बाद। ज्यादा जानकारी लई कॉल करो रूपा बराड़, कॉल 416-991-5939, 416-999-5939।
2: हेलो मम्मी।
3: हाँ हेलो।
2: मम्मी मैं गेम शो चो बोल रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दियो जरा।
3: हाँ हाँ पुत, पूछ की।
2: मम्मी मेरे डैडी का नाम किया?
3: एक कितने का सवाल है पुत?
2: मम्मी 1000 रुपए का।
3: पुत छड़ पर रहन दे, हुण 1000 पीछे आप करे डांगा थोड़ी खानी है।
4: फिट्टे मुतेरे।
5: From the Dave Tatla News Desk, locally covered, nationally connected.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमाल लेके आए हैं साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स होर सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
4: मैं हरसिमरन सिंह। साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज। वोट हरसिमरन सिंह।
5: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
6: आज
7: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए था?
8: चल क्या रहे हैं यहाँ पर?
7: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
7: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?
10: दोस्तों मैं रविंदर वडाली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर दे तुहाडे अपने शहर तुहाडी डिमांड
11: दे बदनाम करती नाले मैं ते क्यों दी मिठी चोरी
10: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसीलिए आपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार इस शो मिस ना करो। तो मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर शाम 7 बजे।

0: ताजिया सब्जिया फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मां एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड यूनिट
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
2: ਸਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਦਾ ਨੀ ਪਾ ਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
2: माखियों मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज

0: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
1: 416-509-1509
0: और विजिट insuranceforyou.ca।
2: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्होंने सुन वास्ते जां देश प्रदेश नो लाइव देखने वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नो www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहते लाइव ते क्लिक कर लो, जो वाच करना चाहते हैं तो वह ते क्लिक करो, या फिर अपने IPTV बॉक्स के उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी क्लिक करो, उत्ते तुसीं सुन भी सकते हो वेख भी सकते हो 24/7। दुनिया के किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तो पहला एक नाम याद रखो, कोमल ट्रैवल एंड टूर्स। डेस्टिनेशन बैडिंग करनी है, शिप क्रूज ले जाना है, या फिर किसी आइलैंड से हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज, कोमल ट्रैवल इंडिया पंजाब लई डायरेक्ट फ्लाइट बुक करने वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वालिया नु 905-239-7011 905-239-7711 कोमल ट्रैवल एंड टूर।
3: Solution to promote your business. Desh Pardesh Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang 24 Ghante Satto Din. Hun tak Desh Pardesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vadha karan waste Desh Pardesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551
2: ਸਸਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੱਤ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਗ੍ਰਿਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਹਰ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਮੀਟ ਵੀ ਔਰ ਮੈਰੀਨਡ ਕੀਤਾ ਮੀਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹੋ 45 ਡਸਟ ਡਰਾਈਵ 15 ਫੈਂਡਰਵੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 9985 ਮਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 1465 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 33 ਫਾਰਲੀ ਡਰਾਈਵ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ और 600 हैस्पिटल रोड कैम्ब्रिज नमी खुनी ब्रांच 25 सेंट्रल वुड पार्कवे कैनेडी के सेंट्रल वुड पार्कवे के नेड़े आओ हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड से।
4: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
2: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6446
4: 905-564-6446

0: ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਲੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੋਨਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾਸ਼ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਨਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ।
1: बिल्कुल जी, गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है और आप स्किल डेवलप करते हैं, फंडिंग हासिल करते हैं, 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक का लोन है। क्यों दे रही है? क्योंकि आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, आप 20 घंटे हफ्ते में अकाउंटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, टीचर नहीं है, इजी असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम्स भी नहीं है। ज्यादातर हमारे क्लाइंट्स अंकल आंटी हैं, 40-50 साल के हैं, और फुली ऑनलाइन, आपने कहीं नहीं जाना, घर के कम्फर्ट से आपने क्लास लगानी है, मतलब वही ऑनलाइन 20 घंटे पर वीक, और आप 50,000 से 1,70,000 हासिल करते हैं बिना गारंटी के, बिना कोलैटरल के, बिना किसी क्रेडिट चेक के। ऐसा लोन आपको धरती पे कहीं भी नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल। ते सराशी, जड़े ही फंडिंग मिलती है अपन, उन्हें ऊपर कितने कितने स्पेंड कर सकते हैं, ते सब तो ज्यादा फायदा किनू हुंदा है?
1: हाँ जी, इसको आप कहीं भी कैसे भी अपनी मर्जी से खर्च करते, गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, कवर करने के लिए फंडिंग दे रही है। किसी के लिए ग्रोसरी करना, किसी के लिए बैक होम भेजना। अब आप मान के चले, इसमें ज्यादा बेनिफिट उनको जिनकी फैमिली इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन 100,000 डॉलर है, पीआर है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, एंड अगर मैरिड विद किड्स है, फैमिली ऑफ 4-5 है, तो अराउंड 168,000 डॉलर तक की फंडिंग आपको अप्रूव होती है। ये लोन की 2-3 खास बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं फैमिली ऑफ 4 में, हस्बैंड वाइफ दोनों, 1.5 लाख उनको बनता है फंडिंग का। अब सबसे बड़ी बात, जो टर्म्स है इस लोन के, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं और। नंबर 1, 2.5 साल तक के लोन, 2 साल का कोर्स है, ऑनलाइन आसान है, एग्जाम्स नहीं है, 2.5 साल तक के लोन 0% है, मतलब ब्याज ही नहीं है उसके ऊपर। पहली किस्त कब स्टार्ट है? 2.5 साल के बाद, तब ब्याज कितना है? 2.5% पूरे साल का, मतलब $1,00,000 का ब्याज सिर्फ, $2,500 पूरे साल का, महीने का $200। गारंटी के बिना लोन है ये। और इसमें मतलब अगर घर की मोर्टगेज 2500 है तो 1500 तो ब्याज जाता है, शुरू के 20-30 साल। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपकी 400 किस्त बनती है तो उसमें से $100 ब्याज जाता है पूरे 15 साल। वेट ना करें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, और इसमें कोई भी हिडन चीज, चलाकी नहीं है।
0: सराशी, कोर्सेज की थोड़ी लिस्ट दो कि कोर्स केड़े-केड़े नेगे जड़े ऑफर किए जाते हैं।
1: हाँ जी, ऑनलाइन सोके जो कोर्सेज है कि जी, बिजनेस अकाउंटिंग मेन पॉपुलर है बिजनेस, क्योंकि वो 2 साल का है, फंडिंग डबल आती है, लोन डबल आता है, गवर्नमेंट आपको पता है हर जगह कट्स कर रही है। आप गवर्नमेंट तो अपने एयरपोर्ट भी बेच रही है, पीछे ना रही है, यहाँ से भी इन्होंने कट्स कर देना थोड़े टाइम में। आपके सारे आस पड़ोस वाले लोन ले चुके हैं, इन्वेस्ट करें, कुछ भी करें इस लोन का, हम सब पे इस दुनिया में लोन तो चढ़ा ही हुआ है, तो एक इस लोन से दूसरे लोन भी लोग उतारते हैं। हम बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड 22% पे था, ये लोन 0% पे, हमने वो भी उतार दिया। तो इसलिए हमारी फीस कितनी है काम होने के बाद? 199 है, कुछ भी हिडन नहीं है। कल भी 8 बंदों की फंडिंग गिरी, अभी तक 4 बंदों की फंडिंग उनके खाते में 2-2 हो चुकी है, पीछे ना रहिए। हमारी फीस तो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है, कोई चलाकी मीठी बातें नहीं है, प्रॉपर ऑफिस, 6 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, नंबर 437-234-3175, व्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप 1.5 महीने में फंडिंग आपके खाते में आ जाती है, लेट ना करिए। 437-234-3175, 437-234-3175, 437-234-3175।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सरांश जी, जरूर तुसी गलबात कर सकते हो यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक तो। सरांश नागपाल जी सन लाइन ते जुड़े हुए सी। अगले कॉलर 6643, हाँ जी सत श्री अकाल।
2: हाँ जी मनप्रीत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
0: ਹਾਂ ਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
2: ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੋਨੀ ਪਾਵਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ
2: ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋਜੂ ਵਿਚਾਰੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਨਾ,
2: ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ।
2: ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
0: ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਇਹ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 905-564-4444 905-564-6444 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 4-5 ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀ ਬਾਬਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।

0: For advertisements and information,
1: साडे हेड ऑफिस नु कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551.

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.